पंड जमी है पंड जमी है पंड मंगन भी आखो पंडो खो वह दोस्ती पंडो चले राखो पंड मुआ पंड पालिए पंड खो वह बंदान सो क्यों मंदा आखी है जित जमे राजान पंडो ही भांडे उपजै भंडे बाज ना कोई नानक भंडे बागरा एको सचा सोए जित मुख सदा सा लागी है भागा रती चार ना

0: देखो को निर्जास वस्तु अंदर वस्त समावे दूजी होवे पास साहिब सेती हुक्म न चले कही बने अरदास ऊड़क माने कूड़ो होवे नानक सिफत विगास महला दूजा
1: नाल आने दोस्ती बड़ा दूसे उने गो पानी अंदर लीक जो तिस दा थाओ ना थियो महला दूजा होया ना करे कम आ न सके रास जेक अद चंगी करे दूजी भी वह रास पौड़ी चाकर लगे चाकरी जे चले खसम पाए हुरम तिसनु अगले ओ वजो पिदूना खाए खसम करे बराबरी फिर गैरत अंदर पाए वजो गवाए अगला

0: वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी की फतेह, वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु जी की फतेह।
1: पौड़ी वड्डे कियां वड्याईयां, किछ कहना कहना जा।

चित आवन का सदका सर्व सुख होवे। जहां जहां खालसा जी साहिब तहां तहां रच्छे आरे आयत। देग तेग फतेह बिरद की पैज पंथ की जीत। श्री

0: सत है श्री वाहे गुरु जी।
1: श्लोक पवन गुरु बाणी पिता माता धरत महत दिवस रात दुई दाई दया खेलै सगल जगत।

रंग परंग नेक न जापन करतबा जी अंदर जियो सब की जान ला सब किस तेरे वास तेरा कर पला तेरा कर नंद वधाई तुद कर मान महत्ता तेज अपना आप जर सर्व कला परपू।

काल पुरख अपने पंथ दे सदा सहायता कर जियो। श्री ननकाना साहिब अति होर गुरुद्वारे अमर धामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार अति

कोई नौ न जान मेरा, निमानियों के मान गुरु, नितानियों के ता नियोटियों की

तेरा अंत ना जाई लख्या रहाओ। जात में जोत, जोत में जाता अकल कला भरपूर आया। तू सच्चा साहिब सचवाले हो जिन कीती सो पार पाया कहो नानक।

मां शरण परे की राखो शरमां जप तप संयम धर्म ना कमाया सेवा साध ना जानिया हर राया कहो नानक हम नीच करमा शरण परे की। एक ओंकार श्री वाहे गुरु जी की फतेह पातशाही दसवीं कबे ओ बाच बेनती चाओ पई हमरी करो हाथ दय रक्षा पूर्ण होए चित की इच्छा तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट सब तुमका तब चरणन मन रह हमारा अपना जान करो प्रतपारा हमरे दुष्ट।

पाऊं। सेवक सिख हमारे तारी है, चुन चुन सत्र हमारे मारी है। आप हाथ दे मुझे उबरिय, मरण काल का त्रास निवरिय। हुजो सदा हमारे पच्छा, श्री अस तुझ जो करियो रक्षा। राख लेहो मोहे राखन हारे, साहिब संत सहाय प्यारे। दीन बंद दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतुर्दश कंता। काल पाए ब्रह्मा भवतरा, काल पाए शिवजू अवतरा। काल पाए कर विष्णु प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जवन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जवन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहे हमारा। जवन काल सब जगत बनायो, देव दैत जक्षन उपजायो। आदि अंत एक अवतारा, सोई गुरु समझी आहो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी। सिवकन को शिव गुण सुख दियो, सत्रन को पलमो बद कियो। कट कट के अंतर की जानत, पले बुरे की पीर पछानत। चीटी ते कुंचर असथूला, सब पर कृपा दृष्ट कर भूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर पछन, कट कट के पट पट की जन। जब युद्ध करख करा करतारा, प्रजा धरत तब देह अपारा। जब या करख करत हो कब हो, तुम मैं मिलत देह तर सब हो। जेते बदन श्रेष्ठ सब तार, आपे आपनी भूज उचार। तुम सब ही ते रहत निरालम, जानत भेद भेद अर आलम। निरंकार निर्विकार निरलंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड उचारत भेदा, जाको पेव न पावत बेदा। ताकाउ कर पाहन अनुमानत, महामूड कछ भेद न जानत। महादेव कौ कहत सदा शिव, निरंकार का चीनत नह पेव। आपे आपनी बुद्ध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तुह तेती। तुमरा लखा न जाए पसारा, केह विद सजा प्रथम संसारा। एकै रूप अनूप स्वरूपा, रंक भयो राव कहीं भूपा। अंडज जेरज से तज कीनी, उत्पुज खान बहुर रच दीनी। कहूँ भूल राजा हुए बैठा, कहूँ सिमट पय संक्रय कैठा। सगरी सृष्ट दिखाई अचम पाव, आद जुगाद स्वरूप सुजम पाव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख वार असिख संघरो। दुष्ट जते उठवत उत्पाता, सकल मलेश करो रण काता। जे अस तुज तब सरनी परे, तिनके दुष्ट दुखित हवै मरे। पुरख जवन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार त्याय है, ताके काल निकट नह आय है। रक्षा होए ताहे सब काला, दुष्ट अरिष्ट टरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जहे नहर हो, ताके ताप तनक मह हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्मो सब होई, दुष्ट शह स्वय सकै न कोई। एक बार जन तुम्हें संभारा, काल भांसते ताहे उबारा। जिन नर नाम तिहारो कहा, दारिद दुष्ट दोख तेरा। खड़ग के तुम्हें शरण तिहारी, आप हाथ
अर्थ दे लेहो।

सर्वठार मोहो सहाय दुष्ट दोख ते ले हो बचाई। खड़ग के तमय शरण तिहारी आप हाथ दले हो उबारी। सर्व ठार मोहो सहाई दुष्ट दोख ते ले हो। सवैया आए गहे जब ते तुमरे तब ते को आँख तरे नहीं आने आन। राम रहीम पुराण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्य आन। सिमृत शास्त्र वेद सब बहुभेद कहें हम एक ना जाने आन। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो हे बखाने दोरा।

अस गोविंद राम कली महला तीजा आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता पाया सहज सेती मन वजियां वधाइयां राग रतन परवार परियां शब्द गावण आईयां शब्दो ता गावह हरि केरा मन जनी वसाया कहे नानक आनंद होआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब विसारना अंगीकार ओह करे तेरा कारज सब सवारना सबना गल्ला समरथ स्वामी सो क्यों मन हो विसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले साचे साहेबा क्या नाही कर तेरा कर ता तेरा सब किछ है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी नाम मन वसावे नाम जिन कै मन वसिया वजे शब्द कनेरे कह नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर सांत सुख मन आए वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो जिस दियां एह वड़ियाईया कहे नानक सुनहो संतहो शब्द तरहो प्यारो साचा नाम मेरा आधारो वाजे पंच शब्द तित कर सुभागै कर सुभागै शब्द वाजे कला जित कर तारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक को मारिया तुर कर्म पाया तुद जिन कौ से नाम हर कै लगे कह नानक तह सुख होआ तित

तेरे सगल विसूरे दुख रोग संताप युतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सर से पूरे गुर ते जानी सुनते पुनीत कहते पवित्र।

पैज पंथ की जीता श्री साहिब जी सहाय खालसे जी के बोलबाले बोलो जी वाहेगुरु बोलो जे सिखा नू सिखी दान केस दान रहत दान बबेक दान वसाहा दान परोसा दान दान सिर दान नाम दान श्री अमृतसर साहिब जी दे दर्शन इसनान चौंकियां झंडे बंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो जे सिखा दा मन नीमा मत उच्ची मत पत दा राखा आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाई दतार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारिया गुरधामा दे जिन्ना तो पंथ नु वसोड़िया गया है खुले दर्शन दीदार ते सेवा संभाल दा दान खालसा जी नु बख्शो हे नुमानिया दे मान नतानिया दे तान ने उटिया दी ओटा धन धन श्री गुरु रामदास साहेब जीओ आप जी दे पावन पवित्र स्थान सच खंड श्री हरमंदर साहेब जी विखे धन धन सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहेब जीओ महाराज आप जी दे हजूर सबद चौंके सो दर रह रास साहिब जी दे पाठ जी की अरदास पुल चुक मुआफ करनी सिख पढ़दे सुनदे सरबत लाहे बंद होवन नानक नाम चढ़दी कला तेरे भाणे सरबत दा भला वाहे गुरु जी का खालसा वाहे

कबीर सात समुंद है मस कराऊं, कलम कराऊं बन राए, बसदा कागद जाऊ कराऊं, हर जस लिखन ना जाए। कागद दीप सब करके अर सात समुंद्रन की मस कह, काट बनस्पति सगरी लिख बेहू के लेखन काज बनह। सरस्ती बकता करके जोग कोट गणेश के हाथ लिख, काल कृपान बिना बिनती न तौ तुमको प्रभ ने कर जय। लिख कत है न छूटी खेन खिन पुलन हार, बखसन हार बखसल नानक पार उतार। सुकह टल गुर सेविया अहनिस सहज सोभाए, दर्शन परसै गुरु का जन्म मरण दुख जाए। होवे सिफत खसम दी नूर अर सह कुरस छटिया, तुद डठ सचे पातशाह माल जन्म जन्म दी कटिया। सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया सबना दावे साह। सज्जन सचा पातशाह सिर शाह दशाह, जिस पास बैठिया सोहिया

जब जरिया तब होए पसम ताना रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है तन की यह बड़ाई जब जरिया तब होए पसम ताना रह किरम दल खाई काची गागर नीर परत है।

किया फिर तो फूलिया फूलिया जब दस मास उर्द मुख रहता सो दिन कैसे भूलिया मधुमाखी त्यों सठोर रस जोर जोर तन किया मरती बार ले हो करिया पूत रहन के दिया देहरी लो बरी नार संग पाई आगे सजन सोहेला मार कट लो सब लोग कुटुंब पायो आगे हंस अकेला कहत कबीर सरहोरे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यो नलनी ब्रह्म सुआ कहत कबीर सुनहोरे प्राणी परे काल ग्रस कुआ झूठी माया आप बंधाया ज्यो नलनी ब्रह्म सुआ वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह।

0: हम अवगुण परे एक गुण नाही, अमृत शाड बिख बिख खाई, माया मोह परम पै पूले, सोत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेहे मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई। सुख टल गुर सेविय, एहन ससहज सुभाय, दर्शन परसे गुरु के, जन्म मरण दुख जाय। होवे सिफत खसम दी, नूर अरसों कुरसों चटी, तुद डिठे सचे पातशाह, मल जन्म जन्म दी कटी। सज्जन सचा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सवना दा विसाह। सज्जन सचा पातशाह सिर सहांदे, जिस पास बैठिया सोही है, सवना दा विसाह। सतनाम श्री वाहे गुरु साहिब जी, वेद पुराण सबे मत सुन के, करी कर्म की आशा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पै चले निराशा। वेद पुराण सबे मत सुन के, करी कर्म की आशा, काल ग्रस्त सब लोग सियाने, उठ पंडित पै चले निराशा। मन रे सरयो न एक काजा, भजियो न रघुपत राजा, रहाओ बन खंड जाए जोग तप कीनो, कंद मूल चुन खाया, नादी बेदी शब्दी मोनी, जम के पट लिखाया। भगत नारदी हृदय न आई, काश कूश तन दीना, राग रागनी डिम्ब होए बैठा, उन हर पह क्या लीना। परयो काल सबे जग ऊपर, माहे लिखे भ्रम ज्ञानी, कहो कबीर जन भए खालसे, प्रेम भगत जिह जानी, परयो काल सबै जग ऊपर, माहे लिखे भ्रम ज्ञानी। कहो कबीर जन भए खालसे, प्रेम भगत जिह जानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मं, हस्त काया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया गुरदयाल है, भय दुख विनाशन है, भगत वछल अनाथ नाथे, शरण नानक पुरख चुत है। बिलावल महला पंजवा, ताती वाव न लगई, पार ब्रह्म शरणाई, चौ गिरद हमारे रामकार, दुख लगे न पाई। सतगुर पूरा भेटिया जिन बणत बनाई, राम नाम औखद दिया एका लिवलाई। रहाउ राख लिए तिन रखनहार, सब ब्याद मटाई, कोह नानक किरपा पई, प्रभ पए सहाई। सोहिला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एको अंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीरत आखिया, करते का होय विचारो, तित कर गाव हो सोहिला, शिव रिह सिरजनहारो। तुम गाव हो मेरे निरभौ का सोहिला, हों बारी जित सोहिलै, सदा सुख होए रहाओ। नित नित जीअड़े संभालियन, देखे गा देवनहार, तेरे दाने कीमत ना पवै, तिस दाते कवन सुमार। संबत साहा लिखिया, मिलकर पावो तेल, देहो सज्जन आसी सड़िया, जं होवै साहिब स्यो मेल। घर घर एहो पाहुचा, सदड़े नित पवन, सदन हारा सिमरिया, नानक से देह आवन। राग आसा महला पहला, छे घर छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको बेस अनेक। बाबा जय कर करते कीरत होए, सो घर राख बढ़ाई तोए रहाओ। बेसोए चसया घड़िया पहरा, थिति वारी माहो हुआ, सूरज एको रुत अनेक, नानक करते के तेवेस। राग तनासरी महला पहला, गगन में थाल राव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बनराय फूलंत ज्योति। कैसी आरती होए भव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत फेरी रहाओ। सहसताव नैन नन नैन है तोहे को, सहस मूरत नना एक तोही, सहस पद बिमल नन एक पद, गंध विन सहसताव गंध इव चलत मोही। सब मह जोत जोत है सोए, तिस द चानन सब मह चानन होए, गुरसाखी जोत प्रगट होए, जो तिस भावै सो आरती होए। हर चरण कबल मकरंद लोभत मनो, आनंदिनो मोहे आही प्यासा, कृपा जल देह नानक सारंग को, होए जाते तेरा नाय वासा। राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बह भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे। पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हर लिव मंडल मंडा हे। ਕਰ ਸਾਧੂ ਅੰਜਲੀ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਕਰ ਡੰਡੌਤ ਪੁੰਨ ਵੱਡਾ ਹੈ ਰਹਾਉ। ਸਾਕਤ ਹਰ ਰਸ ਸਾਧ ਨਾ ਜਾਣਿਆ, ਤਿੰਨ ਅੰਤਰ ਹੋਮੈ ਕੰਡਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ ਜਿਉਂ ਚੱਲੇ ਚੁਭੈ ਦੁੱਖ ਪਾਵੈ ਹੈ, ਜਮ ਕਾਲ ਸਹਿ ਹੈ ਸਿਰ ਡੰਡਾ ਹੈ। ਹਰ ਜਨ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਸਮਾਣੇ, ਦੁੱਖ ਜਨਮ ਮਰਨ ਭਵ ਖੰਡਾ ਹੈ। ਅਵਨਾਸੀ ਪੁਰਖ ਪਾਇਆ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਬਹੁ ਸੋਭ ਖੰਡ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡਾ ਹੈ। ਹਮ ਗਰੀਬ ਮਸਕੀਨ ਪ੍ਰਭ ਤੇਰੇ, ਹਰ ਰਾਖ ਰਾਖ ਵੱਡ ਵੱਡਾ ਹੈ। ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਆਧਾਰ ਟੇਕ ਹੈ, ਹਰ ਨਾਮੇ ਹੀ ਸੁਖ ਮੰਡਾ ਹੈ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਬੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾ, ਕਰੋ ਬੇਨੰਤੀ ਸੁਣੋ ਮੇਰੇ ਮੀਤਾ, ਸੰਤ ਟਹਿਲ ਕੀ ਬੇਲਾ। ਈਹਾਂ ਖਾਟ ਚੱਲੋ ਹਰ ਲਾਹਾ, ਆਗੇ ਵਸਨ ਸੁਹੇਲਾ। ਔਦ ਘਟੈ ਦਿਨ ਸੁਰੈ ਨਾਰੇ, ਮਨ ਗੁਰਮਿਲ ਕਾਜ ਸਵਾਰੇ ਰਹਾਉ। ਇਹੋ ਸੰਸਾਰ ਬਿਕਾਰ ਸੰਸੇ ਮਹਿ, ਤਰਿਓ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨੀ। ਜਿਸ ਹੈ ਜਗਾਏ ਪੀਆ ਵੈ ਇਹੋ ਰਸ, ਅਕਥ ਕਥਾ ਤਿੰਨ ਜਾਨੀ। ਜਾ ਕੋ ਆਏ ਸੋਈ ਬਿਹਾਜ ਹੋ, ਹਰ ਗੁਰ ਤੇ ਮਨ ਹੈ ਬਸੇਰਾ। ਨਿਜ ਘਰ ਮਹਿਲ ਪਾਵੋ ਸੁਖ ਸਹਿਜੇ, ਬਹੁਰ ਨ ਹੋਏ ਗੋ ਫੇਰਾ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰ। ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਬਿਦਾਤੇ, ਸ਼ਰਧਾ ਮਨ ਕੀ ਪੂਰ। ਨਾਨਕ ਦਾਸ ਇਹੈ ਸੁਖ ਮੰਗੈ, ਮੋਕੋ ਕਰ ਸੰਤਨ ਕੀ ਧੂਰੇ।
1: ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰ ਜਸ ਗਾਇਓ,

दंडौत बंदन अनेक बार सर्व कला समरथ डोलन ते राखो प्रभु नानक दे कर हथ हम अवगुण परे एक गुण नाहीं।

सुत दारा स्यों प्रीत लगाई। एक उत्तम पंथ सुनियो गुर संगत, तेह मिलंत जम त्रास मिटाई। एक अरदास पाठ कीरत की, गुर रामदास राखो शरणाई।

संत जना मिल हर जस गायो, कोट जनों के दुख गवायो, जो चाहत सोई मन पायो, कर कृपा हर नाम दिवायो, सर्व सुख हर नाम बढ़ाई।

विस्माद भेद विस्माद रूप विस्माद रंग विस्माद नंग फ्रैजन विस्माद पौन विस्माद पानी विस्माद अग्नि खेडे विडानी विस्माद धरती विस्माद खाणी विस्माद साध लगे प्राणी विस्माद संजोग विस्माद विजो विस्माद भुख विस्माद भोग।

0: पड़पड़ गड्डी लदी है पड़पड़ भरी है साथ पड़पड़ बेड़ी पाई है पड़पड़ गड्डी है खात पड़ी है जेते बरस बरस पड़ी है जेते मास पड़ी है जेते आरजा पड़ी है जेते सास नानक लिखा एक गल और हो मैं चखना चाक महला पहला
1: लिख लिख पढ़।

मस्तिक लाइए मुंडा लाज छड़िया है एक मन लख त्याइए फालते भी हो पाइए जे वे ही कर कमाइए जे हो वे पूर्व लिखिया का तो उतना।

0: माया मत कहाँ लो गारो, शतर न पतर न चौर न चावर, बहती जात रिदे ना बिचारो, रथ नासो न गज सिंघासन, शिन में त्यागत नांग सिधारो, सूर न वीर न मीर न खानम, संग न को दृष्ट निहारो, कोट न ओट न कोस न छोटा, करत विकार दोहु कर चारो, मित्र न पुत्र कर्तर साजन साख, उल्टत जात बिरह की शार, दीन दयाल पुरख प्रपूरण, छिन छिन सिमरो अगम अपारो, श्रीपतनाथ शरण नानक जन, हे भगवंत कृपा कर तारो, हे भगवंत कृपा कर तारो।
1: प्राण

0: हर सर्वरो खंडन गुणकारी काम क्रोध मद मत सर तृष्णा बिनस जाहे हर नाम उच्चारी इशनान दान तापन सुच किरिया चरण कमल हृदय प्रभ तारी साजन मीत सखा हर बंदब जी तान प्रभ प्राण उदारी ओट गही स्वामी समरथ नानक दास सदा बलहारी।
1: आवती कट्यो ना जात प्रेम रस चरण कमल संग दामन बंधियो ना जात विदे मन।

ना को बिल कर कृपा प्रभ साद संग मिले जा फिर देखा ता मेरा अल्लाह बेले वाट हमारे खरी उड़ीणी खन्या हो तिखी बहुत पीणी उसी पर मार्ग मेरा शेख फरीदा पंथ समार सा

बहुत पेड़े ओसियों पर मार्ग मेरा शेख फरीदा पंथ समार सवेरा वाहे गुरु जी का खालसा वाहे गुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद राग सूही बाणी शेख फरीद जी की तप तप लोहे लोहे हाथ मरोरा बावल होई सो सहलोरा सह मन मह किया रोस मुझ अवगन सह नाही दोष।

बोलो जे पंजा प्यारे आ चौहान साहिब जादे आ चालियां मुक्ते आ हठिया जापिया तपिया

दर्शन स्नान चौकिया झंडे डूंगे जुग जुग अटल धर्म का जयकार बोलो जी वाहे गुरु बोलो।

पत दा रखां आप वाहे गुरु हे अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहाय दातार जियो श्री ननकाना साहेब अते होर गुरद्वारे गुरधामां दे जिन्हां तों पंथ नूं विछोड़िया गया है।

0: अंतर पूजा पड़े कते बस संजम तुरका पाई छोटी ले पाखंडा नाम ले जय त्रंदा महला पहला
1: मानस खाने करी नवाज श्री भगवान तिन गल ताक तिन कर।